0: श्रुति को मूल्यांकन होगा तो आधार विकास मंत्रालय समिति गठन करेगा। यातायात व्यवस्था विभाग का महानिदेशक राजीव गोयल को सदस्य कुमार गठित समिति ने क्षति और क्षतिपूर्ति को आधार अध्ययन करी 15 दिन भीतर प्रतिवेदन बुझाने इसके यातायात क्षेत्र का निजी नीति नियम ऐन कानून तथा मापदंड समयानुकूल बनाने जंग बहादुर कार्की को सदस्य कुमार और को समिति बने गठन कर समिति 45 दिन भीतर राय सहित को सुझाव प्रतिवेदन
1: सरकारी संस्था में ग्राहक पहचान सहित उपलब्ध

मोहित लक्ष्मण सोसाइटी संक्रमण का कारण बिहार थप एक जना को मृत्यु उल्लेख रहेको छ। कैलाली की 50 वर्षीय महिला को बुधवार मृत्यु भएको हो। ती महिला चालू वर्ष में जापानी सोसाइटी संक्रमण का कारण मृत्यु होने संख्या

0: Jason, Jensen, met Bram en Maggie. Samen zijn we van Turk en Maggie, je hoort samen daar in Sushina Network, Sushina.
1: भौतिकी दाड़ी प्रभावित क्षेत्र में पुनः बस्ती बसाने विषय भौतिकी दाड़ी तहस तहस बनाए क्षेत्र में पुनः बस्ती बसाने बहस चल रहा स्थानीय ऐतिहासिक धार्मिक स्थान स्थान को सुरक्षा कर पर्ने बताया स्थानीय को जीविकोपार्जन सामाजिक संबंध जोगाने की संभावना।

अच्छे क्वेश्चन सर। हमें शुरुआत में हमने कहा अब हिंदी में धर्म वाला देख ली, उर्दू में डायलॉग वाला देख ली, तो पैर बने तरीके भाषा पहला जस्तै

0: जिसे दुनिया में जो दिखा सके जाती है
1: पहले तो तुम्हें खेल रुपये पास लगे।

सबका सम्पत्ति अठानब्बे पाँच अस्सी पच्चिस शून्य चौदह अठानब्बे दुई चौबिस शून्य छब्बिस अस्सी र मधुबन सरकारी स्वास्थ्य कक्ष पुरानो सरकारी ठाउँ सुरक्षा उत्तर पाँच रहन जानकारी कराइदिए।

0: पालिका में जब भी नगर पालिका पठाइए कि नहीं पठाए तो जो काम हमारे कोरोना बहुत मतलब है कि वो काम हमारा एकदम नहीं कर छोटा वाला से संभव छोटा कि तर बड़ा योजना भर नहीं कर सकते जैसे पुल हुई सात आठ किलोमीटर दबरा महीना हुई ऐसी ऐसी बात में अच्छा
1: परिवार
0: वाला भाई बजट फिर नहीं देना एक साल में कहते हैं 20,000 दे ही रहे 15,00,000 तक ये ठाम कर दूँ 10,00,000 की ठाम बना दें अब अभी 39-30,00,000 दिए कोई मना कोई विकास ये ना हो कि संस्था स्थायी ना हो कि और चाहे नहीं दक्षिण भारत में जाना हो कि ये

कोरोना के सारे मानस के पेशकर में उसका पिछड़ा घर में रखता है इंडिया में प्रदर्शन तथा यात्रा और काम कराने का कोई जादू हो सकता है इसकी स्थिति और आधिकारिक जानकारी को मतलब विश्वास अनुभव अपना खाता सुरक्षित अनुभव और कोई शंका लगे ना तुरंत नदी को सुरक्षा करने में जानकारी दी हो आपत्कालीन अवस्था को कम कर सकते नेपाल का भी एक सुंदर सुंदर वार्ड 11 13 मानव बेच विकल्प 2 कोटी को 11

0: मुंबई दौरे को खुशी लोग पूरा खाना सामग्री पची बारिश को गर्म चुनाव केड़ा टोड़ी साग सब्जी फल फूल सहित खुशी लोग पूरा खाना पत्थर आई तंदुरुस्त बना पूरा खाना संगसंगे दुई वर्षसम इसको मान जारी राखौं।
1: रेडियो प्रभाता एफएम द्वारा सामाजिक मजारी संदेश।

नाचनाई का खो प्रत्यक्ष राजपत्र में प्रकाशित सूचना अनुसार अटवारी पर्व महीना समुदाय कला केवल सार्वजनिक पिता तेनाली गृहत मंत्रालय स्पष्ट पार्दा यह खबर तानसिंह प्रकाश गुप्ता पत्रिकाबाट थारू समुदाय का मौलिक पर्व अटवारी में सुदूर पश्चिम प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय अटवारा तीन दिन सार्वजनिक पिता दिलका उसीघर कैलाली जिला का कैलाली गांव पालिका दुई दिन पिता दिलका सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर थारू समुदाय का मौलिक पर्व का अटवार एक दिन पिता दिवस चलाई लख यह बाहे कैलाली गांव पालिका प्रदेश सरकार का बिना में थप एक दिन थपे का समारोह पिता दिलक गांव पालिका का दक्ष राजसम चौधरी जानकारी दिन बाद थारू समुदाय अटवार को सोमवार का दुई दिन अटवारी पर्व मनाई कर कैलाली से प्रेम चौधरी खबर पठाई प्रधानमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग स्वीकार कर्मचारी प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का कार्यालय के अनुसार आज बिहार 9 बजे समय कोष का खाते में 13,54,09,3,117 मुद्दा था। कार्यालय के अनुसार भदौ 26 गते संध्या 5 बजे 28,20,14,366 रकम प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष का निर्मित 9,9 करोड़ सरकार एकला गांव कोष में से प्रेरित करना में राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण में से 1 अरब निकासा पैसा करेगा उसे कर कोष का 2 बैंक में नगर खाता में फिर रकम पकड़ना कम जाएगा 26 गते संध्या 5 बजे पास खाता में 1,54,770 डॉलर

हमारा सन्देश अतः कार्य सात बजे नेपाली भाषा हमारा सन्देशले खरिद माथि तब समाचार संसार कक्ष आश कुशल प्रार्थिक सुन्दर गौरी शंकर कैमरा संग मोहन कुमार रेडियो प्रभाव जय गोपाल।

मौसम का फोटो छ ला फेरि यसै गर्यो मौसम कुरा गरिन पनि सबैलाई शेयर गरिदिन्छु समझा सकियो हर नाम की है कि ना फिर मैं बना इतने बेटा हूँ मैं तो फोटो खुले बनाए दिन सो तो वो क्या करने उसने समझाने बनाए ना उसने बने को मारने किसको कोई ऐसे दिल कर दे हाय साथी हेलो माहू मिली

बाबरी ताको पुष्णा सुधार का लगी तिस्ता अभ्यास रुलाई समाचार करने पड़ता था तिस्को लगी पालिका रुले पनी सराय करने पड़ता था रामतार को चंद्रपुर नगर पालिका ले बने बाबरी ताको पुष्ण अवस्था सुधार का लगी स्वास्थ्य संस्था र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवी का मार्फत विभिन्न कार्यक्रम करी रहेको छ।

0: सूर्य सिंह सावन पर दसाई हानिकारक नहीं रहा वो फिर यदि सपा दर्शक उपचार केंद्र में जाने पर
1: विश्वास लगना और सही जानकारी फैसला और नकल उपचार केंद्र का नकारा आधिकारिक नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल।

0: saya hari ada dia buat yang dia bisa pernah cara kerja untuk lakukan kerja kena mencari pak.
1: Bisas lama usai dan hari pada undang kerja kena cara baru kerja kerja adik adik kerjaan istilah baik Nepal dan wajib mencakap apa sih dan dari dia cekila. नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै विपि पुर्याना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वप्रथम अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धको सहकार्यमा इन्टरनेसनल